आप सुन रहे हैं रेडियो नारा निर्वाण नाइट्स, और खेल प्रेमियों के लिए अच्छी खबर है, स्पोर्ट्स लवर्स के लिए अच्छी खबर है। कैरोलिना हरिकेन्स का ट्रेनिंग कैंप आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया है और टीम नए सीजन की तैयारियों में जुट गई है। ये मतलब इतना अच्छा हो गया ना खेल प्रेमियों के लिए। खेल प्रेमी बस इसी खबर का इंतजार कर रहे थे कि कैरोलिना हरिकेन्स का ट्रेनिंग कैंप कब शुरू होने वाला है, और आखिरकार ये शुरू हो चुका है। अब आप जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं, खेल सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, फिट रह सकते हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स, और मैं तो पूछना ही भूल गया कैसे चल रही है आपकी आज की शाम। एंड गणेश फेस्टिवल में ऐसा आपने क्या यूनिक किया है, वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स, पक्का देसी पक्का लोकल।

हेलो हाय, कसक काय। और अगर घर खरीदने का आप सोच रहे हैं तो आपके लिए एक बड़ी खबर आ रही है। हाल ही में एक रिपोर्ट के मुताबिक रैली और पूरे ट्रायंगल क्षेत्र का प्रॉपर्टी बाजार अब खरीदारों के पक्ष में बदल रहा है। बढ़ती ब्याज दरों की वजह से घरों की बिक्री जो है वो थोड़ी धीमी हो गई थी, जिससे पिछले साल के मुकाबले यहाँ मकानों की कीमतों में करीब करीब 6.2% की गिरावट दर्ज की गई है। जानकारों का कहना है कि मोल तोल करने और अच्छा सौदा पाने के लिए ये एक बेहतरीन समय है। और आप अगर प्रॉपर्टी खरीदने का सोच रहे हैं तो आप प्रॉपर्टी सोच सकते हैं, मतलब ये आपके लिए फायदेमंद डील हो सकती है, ऐसा विशेषज्ञों का कहना है। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा, इट्स रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल। एंजॉय करते हैं अगला एक गाना।

मतलब कहने का मतलब यही है कि हर किसी का सपना होता है एक घर खरीदना। फिर इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे, हर जगह वो पर्सन बस घर घर घर की एडवर्टाइजमेंट्स, घर का इंटीरियर, ये चीज़ें देखना शुरू कर देता है। और एक बार दिमाग में ये चीज़ बैठ गई कि मुझे घर लेना है, तो इंसान बहुत सारी मेहनत करके अपना सपना पूरा करने के लिए जुट जाता है। अगर आप भी ऐसा सपना आपका पूरा करना चाहते हैं तो ये फ़ायदेमंद डील हो सकती है। आप मार्केट में रिसर्च कर सकते हैं, जिस प्लेस में, जिस जगह पे आपको घर चाहिए आप थोड़ा देख सकते हैं, एंड आफ्टर दैट यू विल गेट बेस्टेस्ट डील, ऐसा कहना है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर, निर्मला नाइट्स, रेडियो नायरा, पक्का देसी।

बना नाइट्स एन्जॉय किया आपने गाना एंड हेलो हाय कसं काय मराठी पाऊल पडते पुढे असं म्हणतात ना. मतलब मैं ये कह रहा हूं कि मनोरंजन की दुनिया से सबसे बड़ी खबर आ रही है कि मराठी फिल्म गोंधळ, दैट इज गोंधळ इन हिंदी, गोंधळ इन मराठी, ओके, को ऑस्कर 2027 के लिए भारत की तरफ से आधिकारिक एंट्री के लिए चुन लिया गया है. क्या बात, वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस. एंड इस बेहतरीन थ्रिलर फिल्म ने 33 बड़ी फिल्मों को पछाड़कर ऑस्कर में भारत का प्रतिनिधित्व करने का जो है वो हासिल कर लिया है. मतलब कॉन्ग्रेचुलेशंस. मराठी फिल्में हमेशा मैं देखता हूँ एंड बहुत ही अच्छी स्टोरी लाइन एक्टिंग होती है, एकदम नेचुरल, कोई बनावटी चीज़ उसमें नज़र नहीं आएंगी. तो अगेन आप एंजॉय कर सकते हैं अगला गाना, सुनते रहिए.

आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्मला नाइट्स बातें कर रहे हैं हम बॉलीवुड की खबरों की। तो वही पर्सनल लाइफ की बात करें तो रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण आज मुंबई के प्रसिद्ध सिद्धि विनायक मंदिर में बप्पा के दर्शन करते हुए देखे गए। दोनों ने अपने दूसरे बच्चे के वेलकम से पहले आशीर्वाद लेना चाहा बापा का और पहुंच गए सिद्धि विनायक के मंदिर। इसी के साथ रणवीर सिंह ने एक बेहद नेक काम करते हुए 1000 बच्चियों की पढ़ाई का खर्चा उठाने का जो है वो इरादा किया है। मतलब क्या बात है यार, अस्ति धुरंधर है रणवीर सिंह, ऐसा कहने में कोई हर्ज नहीं है। एंड दीपिका पादुकोण एंड रणवीर सिंह की जोड़ी के बारे में मैं जितनी भी बात करूँ, जितनी भी तारीफें करूँ, कम है। व्हाट अ सक्सेसफुल कपल, बहुत अच्छा लगता है। एंड फिलहाल आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्मला नाइट्स। एंजॉय करते हैं अगला एक गाना बजे।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्माता नाइट्स एंड बड़े पर्दे पर। आज दो बड़ी फिल्में दैट इज दायरा और वाइब सिनेमा घरों में रिलीज हो गई है। दायरा में करीना कपूर के अभिनय की खूब तारीफ हो रही है। मतलब एक्ट्रेस के बारे में अगर बात करूँ तो करीना कपूर का जो अलग ही जो टशन रहता है फिल्मी पर्दे पर वो देखने मिल रहा है। एंड कुणाल खेमू की फिल्म वाइब दर्शकों को हंसाने का वादा कर रही है। मतलब दोनों फिल्मों में वाइब तो है ये कहना मतलब थोड़ा सा अच्छा रहेगा ऐसा मुझे लग रहा है। एंड बेबो जब भी बड़े पर्दे पे आती है तो कमाल रहती है असली हीरोइन, और हीरोइन का जो टशन रहता है ना वो मुझे तो बस बेबो में ही नजर आता है। जब भी मेट से लाइक क्या ही कहूं मैं। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स, एंजॉय करते हैं। अगला ही गाना बने रहेगा रेडियो नायरा पर। पक्का देसी पक्का लोकल
1: पर दो साए हैं, अंधेरे की नाजायज औलाद है शायद, घूंट घूंट खून पी कर दोनों पले हैं शायद। पातले जमीन है न सर पे आसमान है, जिंदगी कुचल गई ये उनकी दास्तान है।

आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा नाइट्स। नाइट हम बातें कर रहे थे बॉलीवुड की कुछ खबरों की, तो अगली खबर यह है कि एक बड़ी घोषणा मैं आपको बताना चाहूँगा कि आईफा अवार्ड्स एक बार फिर अबू धाबी के आइलैंड में आयोजित होने जा रही है। इस शानदार समारोह में सलमान खान और शाहरुख खान समेत कई बड़े सितारे जो है वो पार्टिसिपेट करने वाले हैं। मैं यही कह रहा था कि आईफा का जो अवार्ड रहता है पुराने यार 90s के किड भी रिलेट कर पाएंगे। अवार्ड फंक्शन में जिस तरह के सेलिब्रिटीज़ के डांस हुआ करते थे, फिर वो सलमान खान का स्वैग हो या शाहरुख खान की एंकरिंग हो, मतलब ये बहुत ही अलग लेवल पे होता था। एंड उसके बाद तो लाइक आईफा का क्रेज़ अब तक कायम है। आईफा और वो भी दुबई में, मतलब मज़ा आने वाला है ना। तो कैसे चल रही है आपकी आज की शाम? आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा नाइट्स। एंजॉय करते हैं अगला गाना।

0: कि मेरे बस का नहीं था।
1: तो तू अपना आलस छुपाने के लिए झूठ बोलेगा?
0: हाँ, झूठ में क्या बुराई है?
1: क्या बुराई है किसी सच्चे आदमी से पूछना?
0: सच्चा आदमी तुझे नहीं पता क्या?

0: Armit on the mic, writing what I feel.
1: आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पंडित बना नाइट। सॉरी यार, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है। रिसेंटली सोहेल खान का एक वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, जिसमें वो बहुत अच्छी तरह से गणपति बापा की मिरवनुक में थिरक रहे हैं। इतने अच्छी तरह से थिरक रहे लोग, उन्हें ट्रोल कर रहे हैं, वुल्वरिन दिख रहे हैं या फिर ऐसा लुक है, फलाना है। सोहेल खान की पर्सनैलिटी उनके प्राइम टाइम पर आपने देखी है, मतलब सलमान खान से भी अच्छी पर्सनालिटी उनकी थी वो टाइम में, मैंने दिल तुझको दिया। सोहेल खान ने बहुत अच्छे अच्छे किरदार भी निभाए हैं एंड ही इज़ लाइक हैंडसम मैन। अब एज के साथ चीज़ें कुछ होती है तो आप ट्रोल करोगे तो ऐसा होता नहीं, ट्रोल करना है तो आप कीजिए ना, दिशा को ट्रोल कीजिए। दिशा पाटनी बापा के दर्शन करने आई तो किस तरह के कपड़े उन्होंने पहने थे सब जानते हैं, तो ट्रोल उन्हें कीजिए। जो बापा के भक्ति में तल्लीन होके थिरक रहे हैं उनको ट्रोल करना सही बात नहीं। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पंडित बनाम नाइट्स, बने रहिएगा रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल।

आपने एंजॉय किया ये गाना गाना था, वाकई में काफी ब्यूटीफुल जिसे सेट कर रखी है इस शाम की वाइब। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स। तो थैंक यू सो मच रेडियो नायरा एंड निर्वाणा नाइट्स को इतना सारा प्यार देने के लिए। आप हमारे रेडियो नायरा के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से और एप्पल प्ले स्टोर से। कुछ भी नहीं करना है, आपको सिंपली टाइप करना है रेडियो नायरा, देन आपको मिलेगा ऐप। ऐप मिलने के बाद आप एंजॉय कर सकते हैं हमारे आरजेस के शोज एंड एंजॉय कर सकते हैं अनलिमिटेड म्यूजिक देश और दुनिया के किसी भी कोने से। बस शर्त इतनी सी है कि आपका नेटवर्क अच्छा होना चाहिए। तो बहुत सारा धन्यवाद आप सभी को कि आप रेडियो नायरा को एंड निर्वाणा नाइट्स को इतना सारा प्यार देते हैं, एंड ऐसा ही आपका प्यार जो है वो बरकरार रखिएगा हमेशा के लिए। आप लिसनर्स की वजह से तो मुझे इतना अच्छा लगता है कि मैं क्या बताऊँ। एंजॉय करते हैं, अगला गाना बने रहेगा रेडियो।

आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पंडित बना नाइट्स। तो यही है मतलब कीर्ति सानन लाइक ट्रोल हो गए थे रक्षाबंधन के ऐड को लेकर, बाद में वो ऐड हटाना पड़ा। वैसे ही अगर आप किसी स्पिरिचुअल जगह पे जा रहे हैं तो आप एक ढंग के कपड़े पहनने का रूल जो है वो अप्लाई करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। आप कुछ भी मतलब पहनोगे तो ऐसा थोड़ी है, मॉडलिंग का शो थोड़ी चल रहा है ना, तो वहाँ पे ये करने की ज़रूरत नहीं है। ट्रोल कीजिए ना, इतना ट्रोल कीजिए कि आगे से कोई भी ऐसे कपड़े पहन के बापा या किसी भी स्पिरिचुअल जगह पर ना जाए, ये करना चाहिए। जिसको ट्रोल करना होता है उसे आप लोग ट्रोल नहीं करते, और जिनको करना नहीं चाहिए उनको ट्रोल करते हैं। भैया ये कैसा ट्रोल करना है ना। तो आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पंडित बना नाइट्स, एंजॉय करते हैं अगला एक गाना। गाना भी पक्का

नाइट्स और मैं यही कह रहा था कि बप्पा की मिरवणूक जब निकलती है तो जो ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं, मृदंग हो गया, ढोल हो गया, ताशा हो गया, वो भी कम आवाज में, ऐसे में मिरवणूक निकलती है तो काफ़ी अच्छा भी लगता है और ऐसा एक्चुअल में होना भी चाहिए ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि यू नो लाइट्स इट्स नॉट आर ट्रेडिशन कि जोर जोर से लाउडली कुछ भी गाने बजा रहे हैं, है ना, कैसा हो सकता है ना, आप सह कैसा सकते हो तो ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट के साथ अगर बप्पा की मिरवणूक निकलती है तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगेन 7 से 10 का ये टाइम आप लोगों के साथ बात करते करते कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। कल मिलूंगा आपको रेडियो नायरा के निर्वाणा नाइट्स इस शो पर, 7 से 10 मेरा शो रहता है एंड आप बहुत एंजॉय कीजिएगा, गणेश बापा का फेस्टिवल ये चल रहा है एंड एंजॉय कीजिएगा अगला एक गाना। तब तक के लिए गुड नाइट, शब्बा खैर।

नया साल, नई उम्मीदें, नए गाने, नए सपने, नई बातें नए साल पर, सब कुछ नया सिर्फ रेडियो नायरा पर।

रेडियो सिटी पर सुनिए द हम्मा सॉन्ग, संग बाय जुबिन नौटियाल, शाशा तिरुपति, कंपोज्ड बाय ए आर रहमान, रिक्रिएटेड बाय बादशाह एंड तनिष्क, एंड रिटन बाय महबूब।

प्यार है इंडिया से, यारी है मशीन से, उड़े चाहे आसमां में, दिल है जमीन पे।

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: आप सुन रहे हैं नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD 44 1090 AM, पक्का देसी पक्का लोका।

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: आप सुन रहे हैं नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD 44 1090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

सुनते रहिए रेडियो नहरा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 1490 AM, कनारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

पर जब गाना बजे लगे सब सर हिलाने शौकीन चाहिए टिकटे चाहे होने देना शौक ऐसे मुझे गाली बकते पर इंस्टा पे मेरे साथ चाहिए फोटो घड़ी धीरे चलती हम तेज चलते भर डाला ओटू इनके फेस बनते इनके करियर से लंबे हम पे केस चलते ए

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स, नॉर्थ कैरोलिना।
1: आप सुन रहे हैं नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD 44 1090 AM, पक्का देसी पक्का।

Good morning. Hello. Hi. Namaste. I am back on 101.9 FM, 99.9 FM HD4 for 90 AM and 99.9 FM HD3 for Telugu. Naira se main hu aapki apni Monica aur aap sun rahe hain Trinilunes and Talk. Well, good morning. Morning hai ji aur wahi apna purana routine shuru hai. Ghar se office, travel, work aur bhai kaam ka tension. But speaking not, aapke day ko relaxing banane ke liye main aapko Triangle ki special masaledar khabrein sunane wali hu. Aur obviously masti to continue chalte rahne wali hai. वैसे अभी तक ढेर सारी गपशप चल रही थी आपकी हमारे दोस्तों के साथ और नाउ मेरी बारी है आपको एंटरटेन करने की. सो गेट रेडी, मैं ढेर सारी इवेंट अपडेट आपको देने वाली हूँ और हमारे ट्रायंगल में क्या हलचल होने वाली है सब कुछ आपको बताने वाली हूँ. इसीलिए कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मॉनिका के साथ रेडियो नायरा, पका देसी पका लोकल.

अमेजिंग गाना आपने एंजॉय किया ऑन 101.9 एफएम, 99.9 एफएम एचडी 4 फॉर 90 एएम एंड 99.9 एफएम एचडी 3 फॉर तेलुगु। नायरा से मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्रायंगल टून्स एंड टॉक। वेल मॉरिस विले रेडी हो जाओ, आपका नया हैंगआउट स्पॉट आ रहा है। इंट्रोड्यूसिंग रच्चा बांडा फूड ट्रैक, ऑथेंटिक इंडियन स्ट्रीट फूड का असली स्वाद अब आपके शहर में। गर्मा गर्म समोसे, क्रिस्पी डोसा, चपाती चाट एंड फ्लेवर जो सीधा दिल तक जाए। ये सिर्फ फूड नहीं, ये है घर जैसा टेस्ट स्वीट वाले ट्विस्ट में। ग्रैंड ओपनिंग स्पेशल, आओ और पाओ एक सरप्राइज ट्रीट ऑन द हाउस। दोस्तों के साथ चिल करो, फैमिली के साथ एंजॉय करो या खुद को ट्रीट दो, क्योंकि रच्चा बांडा में है हर बाइट फील लाइक होम। नाउ अराइविंग इन मॉरिस विले, कमिंग सून। रच्चा बांडा, जहाँ टेस्ट भी मस्त और वाइब भी बेस्ट है। फिलहाल कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल।

ये ब्यूटीफुल गाना आपने सुना ऑन 101.9 एफएम, 99.9 एफएम एचडी 4 फॉर 90 एएम एंड 99.9 एफएम एचडी 3 फॉर तेलुगु। नायरा सेम है, हूं आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं फाइनल रूल्स एंड टॉक। वेल, हमारे ट्रायंगल में 38th नॉर्थ कैरोलिना डक अनलिमिटेड बैंड द बिलफिश टूर्नामेंट होने वाला है। कम एक्सपीरियंस वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग एंड मीनिंगफुल इवेंट ऑन द क्रिस्टल कोस्ट, द एनसीडीयू बिलफिश टूर्नामेंट। More than just a fishing competition, this tournament is a celebration of conservation, sport fishing, excellence and coastal tradition that has made a lasting impact since inaugural year in 1989. This is must-see event as the combined high-level show of sport fishing and powerful conservation mission. Over the 3 years, the big tournament has helped find our billfish protecting effort, working alongside federal agencies to establish minimized size requirement for blue marlin and promoting ethical fish practices that are now standard across East Coast. मजा आने वाला है, मिसमत करिए, जरा एंजॉय करिए। फिलहाल कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा, पक्का देखिए, पक्का लोकल।

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM. पक्का देसी, पक्का लोकल।
2: एक नंबर मेरा दूर तो गार्डन गार्डन हो गया। Well, 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM and 99.9 FM, SD3 Telugu. नारा से मैं हूँ आपकी अपनी मॉनिका और आप सुन रहे हैं ट्रायंगल रूट्स एंड टॉक।
3: Well, हमारे ट्रायंगल में टॉप ऑफ द ग्रेट कॉन्सर्ट फीचरिंग बॉब सिंक्लायर सेलिब्रेट होने वाला है। एंजॉय अ ग्रेट इवनिंग विद द बॉब सिंक्लायर एंड द बिग बील्स। The group plays acoustic jazz and country music characterized by the great musical stories, inspired harmonies, instrumental and arrangement. Top of the great set at the stage Ella Grace and many more. Up to September, enjoy a relaxing evening filled with the fantastic live music, great company and community spirit. Please remember to bring lawn chair or a cushion for a few amphitheater sitting. You will may bring wine or beer to your concert, but please limit your consumption to the sitting area. No alcohol is allowed on the playground or in the parking lot. फिलहाल कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा, पक्का देसी, पक्का लोकल।
4: तुझे देख के पता है क्या लगता था? कि तू कुछ बहुत बड़ा करेगा। कितना पोटेंशियल है तुझ में? क्या हो गया है? कुछ बन क्यों नहीं पाया तू? What happened?

0: मेरे बस का नहीं था।
1: तो तू अपना आलस छुपाने के लिए झूठ बोलेगा?
0: हाँ, झूठ में क्या बुराई है?
1: क्या बुराई है किसी सच्चे आदमी से पूछना?
0: सच्चा आदमी तुझे नहीं पता क्या?

0: ये अमेजिंग गाना आपने एंजॉय किया ऑन 101.9 एफएम, 99.9 एफएम HD4 और 4090 एएम एंड 99.9 एफएम HD3 फॉर तेलुगु दायरा से मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्राइंगल डून संटॉक। पता है बहुत थकी आप सुबह सुबह ये वर्कलोड देखकर, बट डोंट वरी, आपको रिलैक्स फील करने के लिए ढेर सारी मस्ती कंटिन्यू रहने वाली है। वैसे आपने कुछ नोटिस किया क्या? नहीं ना, हम बातें और मस्ती करते करते सेकेंड आवर में प्रवेश कर चुके हैं और स्टिल हमारी बातें कंटिन्यू रहने वाली है। मतलब आपके साथ बातें और मस्ती तो कंटिन्यू चलते रहने वाली है, बट हमारे ट्रायंगल में क्या हलचल हो रही है, कहाँ क्या होने वाला है, कौन से इवेंट होने वाले हैं, सब कुछ आपको बताने वाली हूँ और ढेर सारे धमाकेदार गाने भी बजते रहने वाले हैं। इसलिए कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा पक्का
1: देसी पक्का लोकल।

Blossom Blossom Rana, aap listen on 101.9 FM, 99.9 FM, LG4, 49 AM and 99.9 FM, LG3 for Telugu, Naira se main hu aapki apni Monica aur aap sun rahe hain Triangle Rooms and Talk. हमारे ट्रायंगल में जॉन पार्डी इन कॉन्सर्ट सेलिब्रेट होने वाला है. कंट्री म्यूजिक स्टार जॉन पार्डी इज ब्रिंगिंग हिज सिग्नेचर हॉन्की टॉन्क एनर्जी टू द किड रिवर स्टेडियम ऑन जुलाई. कांट मिस द नाइट अंडर द लाइट नोन एज मिस्टर सैटरडे नाइट. पार्डी इज सेट डिलीवर एन अनफॉरगेटेबल शो पैक्ड विद द चार्ट टॉपिंग एंड टॉपिंग इट इज हाई एंड एनर्जी परफॉर्मेंसेस. Whether you are backbone in wound for the summer or just looking for the perfect night out, this is your excuse to grab your friend and make it night to remember. मजा आने वाला है इस प्योर जानकारी के लिए आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट जाके चेक कर सकते हैं. फिलहाल कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा, पता देसी पता लोकल.

इस माहौल गाने के बाद वन मोर टाइम वेलकम है जी ऑन 101.9 FM 99.9 FM HD 449 की AM एंड 99.9 FM HD 3 फॉर तेलुगु नायरा से मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्रायंगल टूल्स एंड टॉक्स। वेल हमारे ट्रायंगल में एनुअल क्रिसमस इन जुलाई सेलिब्रेट होने वाला है। द फेस्टिवल किक्स ऑफ ऑन फ्राइडे विद द फुल लाइनअप ऑफ एंटरटेनर्स एंड फूड वेंडर मेकिंग डाउनटाउन वेस्ट जेफरसन एंड परफेक्ट स्पॉट टू स्पेंड द इवनिंग। Saturday bring art and craft, specialty food and local non-profit. The festival extends throughout the downtown area along the Jefferson Ave. With the sidewalk clear for walking and browsing the shop, Ash Country Art Council hosts children activity performance through the street showcasing their magical talent and Santa and Mrs. Claus arrive straight from the North Pole. मजा आने वाला है, मिस्मत करिए, जरूर एंजॉय करिए। फिलहाल कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल।

ये रोमांटिक गाना आपने एंजॉय किया ऑन 101.9 एफएम 99.9 एफएम एचडी 4 4090 एएम एंड 99.9 एफएम एचडी 3 फॉर तेलुगु नायरा से मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्रायंगल टूल्स एंड टॉक उन खूबसूरती जो नजरों में नहीं तो दिल में बस जाए पेश है 92.5 सिल्वर ज्वेलरी का शानदार कलेक्शन जिसमे है 22 कैरेट गोल्ड प्लेटिंग की रॉयल चमक हर डिजाइन में छुपी है बारीकी और प्रीशियस और सेमी प्रीशियस पत्थरों की अनोखी दमक चाहे शादी हो या खास दिन हो या कोई त्योहार हो हर मौके पर आपको दे एक एलिगेंट रॉयल लुक क्योंकि आप सिर्फ ज्वेलरी नहीं पहनते हैं आप पहनती हैं अपनी खुद की पहचान 9 जेम्स ज्वेलरी जहां हर गहना बनाता है आपकी खूबसूरती की पहचान बुक ओनली बाय अपॉइंटमेंट 9 जेम्स ज्वेलरी वेस्ट कैरी 27519 अधिक जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं +1 214 699 9454 फिलहाल कहीं जाइए या नहीं सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा पक्का देसी पक्का लोकल

0: इस माहौल गाने के बाद वन मोर टाइम वेलकम है जी ऑन 101.9 FM, 99.9 FM, HD4, 49 AM, 99.9 FM, HD3 फॉर तेलुगु नायरा से मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्रायंगल टूल्स एंड टॉक्स।
1: वेल हमारे ट्रायंगल में एनुअल क्रिसमस इन जुलाई सेलिब्रेट होने वाला है। द फेस्टिवल किक्स ऑफ ऑन फ्राइडे विद द फुल लाइनअप ऑफ एंटरटेनर्स एंड फूड वेंडर मेकिंग डाउनटाउन वेस्ट जेफरसन एंड परफेक्ट स्पॉट टू स्पेंड द इवनिंग। Saturday bring art and craft, specialty food and local non-profit. The festival extends throughout the downtown area along the Jefferson A. With the sidewalk clear for walking and browsing the shop, Ash Country Art Council hosts children activity performance through the street showcasing their magical talent and Santa and Mrs. Claus arrive straight from the North Pole. मजा आने वाला है, मत करिए, जरूर एंजॉय करिए। फिलहाल कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: इस माहौल गाने के बाद वन मोर टाइम वेलकम है जी ऑन 101.9 एफएम 99.9 एफएम एचडी 4 49 एएम 99.9 एफएम एचडी 3 फॉर तेलुगु नायरा से मैं हूं आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्रायंगल एंड डॉट।
1: बुलेवार्ड ट्रायंगल में बहुत जल्दी पीच पाथवे सेलिब्रेट होने वाला है। वी आर हाइडिंग 20 क्राफ्टेड ग्लास पीचेस अलोंग ट्रायल थ्रू आउट द सैंड हिल एंड इट्स योर जॉब टू फाइंड देम। Each glass of peach is one of a kind of treasure waiting to be discovered, created by friends at Starbucks. List up your hiking shoes, grab your friend or family, and hit the trail for this fun. Free adventure celebrating the beauty of nature and spirit of summer in Sandhill. Each day on our live social media will announce trail for the hunt, so stay tuned. Filhal ke liye jaiye gari, sundariye Monica ke saath, Radio Naira, Pata Desi, Pata Local.

0: इस ऑसम ब्लॉसम गाने के बाद वन मोर टाइम वेलकम है जी ऑन 101.9 एफएम 99.9 एफएम एचडी 4 फॉर 90 एएम 99.9 एफएम एचडी 3 फॉर तेलुगु नायरा से मैं हूं आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्रायंगल डून सेंट ऑफ वेल हमारे ट्रायंगल में बहुत जल्दी चेरी पॉइंट एयर शो होने वाला है हेडिंग द 2026 इवेंट इज द रिटर्न ऑफ लेजेंडरी यूएस नेवी ब्लू एंजल्स जॉइंड बाय एक्साइटिंग लाइनअप ऑफ मिलिट्री एंड सिविलियन एक्ट्स दैट कंटिन्यू टू इंस्पायर एंड कैप्टिवेट फन फेवरेट performances such as Jet Truck, Parachute, Jump Team and Aerobatic Pilot and Randy Ball, RJ Glitter and Tom Larkin are already slated to return. The show is free and open to the public throughout the base pass is required for entry. For more information, check their website. Filhal kahin jaiye ya nahi, sunte rahiye Monica ke saath Radio Naira, paka desi, paka local.
1: That's right. Pump it up.

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM. पक्का देसी, पक्का लोकल।
2: 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, 99.9 FM, SD3 for Telugu. नारा से मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्राइंगल टून्स एंड टॉप। कहा नारा मैंने आपसे की एंटरटेनमेंट की कोई कमी नहीं होगी। देखा बातों बातों में थर्ड आर में प्रवेश कर गए हैं और स्टिल हमारी बातें कंटिन्यू रहने वाली है। ढेर सारी मसालेदार खबरें, ट्रायंगल की कुछ अपडेट्स मैं आपको बताने वाली हूँ। पर अगर आप मुझसे बातें करना चाहते हैं, कुछ कहानियाँ, कुछ किस्से शेयर करना चाहते हैं, या किसी लव्ड वन को आप बर्थडे विश करना चाहते हैं या सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं और 9192944800 पर और सुन सकते हैं ओनली ऑन रेडियो नायरा पर। फिलहाल और एक चाय का कप तैयार कर लीजिए क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: Radio Nara 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM. Pakka Desi Pakka.
1: Dara, aap enjoy kiya 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, 99.9 FM, SD3 for Telugu Nara se. Main hoon aapki apni Monica aur aap sun rahe hain Triangles and All.
2: Well, हमारा ट्रायंगल भी स्टेपिंग इन टू द क्राफ्ट समर एम सी ग्रूव सेलिब्रेट होने वाला है. ईच वीकेंड इन जुलाई पॉटर एंड स्टूडियोज विल हैव सेवरल इवेंट टेकिंग प्लेस फॉर द ग्रेट एक्सपीरियंस इन सी ग्रूव एरिया. फ्रॉम क्लीन ओपनिंग डेमोन्स्ट्रेशन एंड सम हैंड ऑन एक्सपीरियंस इन प्ले, वी होप यू विल प्लान योर विजिट एंड फर्स्ट हैंड लुक एट द प्रोसेस ऑफ मेकिंग पॉटरी. सम पॉटरी स्टूडियोज में रिक्वायर अ रिजर्वेशन टू बी इंक्लूड इन द एक्टिविटीज, सो यू विल नीड टू वर्क डायरेक्टली विद ईच साइट इंडिविजुअली. वी लुक फॉरवर्ड टू विजिट टू असी ग्रू. मजा आने वाला है. जिनको सच में इंटरेस्ट है पॉटरी में, जरूर विजिट कीजिए. फिलहाल कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा. पक्का देसी पक्का लोकल.

0: इस धमाल की दारदारी के बाद वन मोर टाइम वेलकम है जी ऑन 101.9 FM 99.9 FM LG4 फॉर 90 AM एंड 99.9 FM LG3 फॉर तेलुगु नायरा से मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्रायंगल टूल्स एंड टॉक। ट्रायंगल में बहुत जल्दी विंडो वर्ल्ड 415.40 स्पीडवे सेलिब्रेट होने वाला है। डोंट मिस द विंडो वर्ल्ड 450 एट नॉर्थ Greensboro Speedway. Experience thrilling NASCAR action live. Feel the roar of engine and pure excitement of high-stakes racing. Point racing is back at North Greensboro. It's summer time and spectacles at one of the NASCAR's most historic tracks. Don't miss epic tailgate and high-stakes racing among the NASCAR's elite driving and team. The race is on. Multi-platinum country hitmaker is waiting for you. फिलहाल कहीं जाइएगा नहीं, सुन रही है मोनिका के साथ रेडियो नाइन पक्का देखी पक्का लोकल।
1: यारी है मशीन से उड़े चाहे आसमां में, दिल है जमीन पे।

माहौल गाना था ना, एक नंबर, मुझे तो मजा आ गया, आपको भी अच्छा लगा ना। वेल 101.9 FM, 99.9 FM HD4 for 90 AM and 99.9 FM HD3 for Telugu Naira से मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं Triangle Dunes and Talk। लगता है मैं अभी अभी तो आई थी और अभी कहाँ जाने का वक्त हो चला है, और फिकर नॉट, आपके एंटरटेनमेंट में और मस्ती में कोई कमी नहीं होने वाली, ये रेडियो नायरा का और मेरा पक्का पक्का आपसे वादा है। हमारे होस्ट और मैं आपको साथ में एंटरटेन करते रहने वाले हैं on 101.9 FM, 99.9 FM HD4 for 90 AM and 99.9 FM HD3 for Telugu Radio Naira सुन रहे हैं आप, या आप प्ले स्टोर जाके हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं, मस्ती कर सकते हैं हमारे साथ। वेल कल फिर मुलाकात होगी इसी वक्त इसी समय ओनली ऑन ट्रायंगल ट्यून्स ऑन टॉप पर ट्रायंगल की स्पेशल मसालेदार धमाकेदार खबरों के साथ। वेल अगला गाना स्पेशल आपके लिए बजने वाला है, कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का।

सुबह गाना बजे लगे सब सर हिलाने शौकीन चाहिए टिकटे चाहे होने देना शौक को ऐसे मुझे गाली बकते पर इंस्टा पे मेरे साथ चाहिए फोटो घड़ी धीरे चलती हम तेज चलते भर डाला ओटू इनके फेस बनते इनके करियर से लंबे हम पे केस चलते ए

0: ये मेरे बस का नहीं था।
1: तो तू अपना आलस छुपाने के लिए झूठ बोलेगा?
0: हाँ, झूठ में क्या बुराई है?
1: क्या बुराई है किसी सच्चे आदमी से पूछना?
0: सच्चा आदमी तुझे नहीं पता क्या?

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स, नॉर्थ कैरोलिना।
1: नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोका।

0: डू यू नो समवन जो टेढ़ी स्माइल करता है लाइक वरुण धवन एक तरफ से सो नाइस राइट. This is Bollywood Bliss with me, Bharati, on your tune frequency, Naira. And you know what? Varun Dhawan recently reacted to the viral memes around his infamous crooked smile during a fun chat with Tanmay Bhatt. Taking to the trolling and good humor, the actor revealed that it even helped him land 3 advertisements. Varun also hilariously recalled how Arjun Kapoor was happy when the trolling shifted towards him. Joking, मेरे पे आया तो अर्जुन खुश हो गया था. लिविंग एवरीवन इन स्प्लिट्स. इन दोनों एक्टर को इतनी ट्रोलिंग करते हैं ना, इतनी मीम बनाई जाती है इनकी, बट दे आर सुपर पॉजिटिव अबाउट इट. दैट्स द स्पिरिट. स्टे ट्यून्ड फॉर मोर. आई विल बी बैक ओनली ऑन
1: रेडियो नायरा पर. बजेगा सिर्फ बेस्ट हिट्स. रेडियो नायरा 101.9 एफएम, 99.9 एफएम, एचडी 4 1490 एएम. पक्का देसी, पक्का लोकल.

बंसाली नहीं बट बना देते हैं फिल्म। आजा दे दो तुझे एक्शन, I know your intention, डाल स्टोरी पर करना ना मेंशन, मेरे गाने तेरे इंस्टा की कैप्शन, तेरी जान की दुश्मन।

आपके साथ मिटाता हूँ, आपका स्ट्रेस एंड बनाता हूँ, आपके मूड को रिफ्रेश। वेल, कैसे चल रही है आपकी आज की ये इवनिंग? और जैसे मैं डे फर्स्ट से कह रहा हूँ, जब से बापा का आगमन हुआ है, तब से कह रहा हूँ कि हर दिशा में बस एक ही नारा गूंज रहा है, और वो है गणपति बापा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। सुखकर्ता मतलब सुख देने वाले, और दुखहर्ता मतलब दुख को हरने वाले बापा का ये फेस्टिवल चल रहा है। हर जगह पे तरह तरह की कंपटीशन चल रही है, बहुत प्यारी झांकियां लगी है। एंड मौसम तो क्या ही कहूँ मैं यार, बापा का आगमन होते से ही मौसम में जो ठंडक आई है ये भी काफ़ी बेमिसाल लाजवाब है। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स, एंजॉय करते हैं इस शाम का।

पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना

वेल एंजॉय किया आपने गाना। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पंडिरवाना नाइट सैंड। कैसे चल रही है आपकी आज की ये शाम? तो शुरुआत करते हैं कुछ लोकल खबरों के साथ। तो पहली खबर ये आई है कि मौसम का नया रिकॉर्ड, कल रैली ने गर्मी का पुराना जो रिकॉर्ड है वो तोड़ दिया और तापमान जो है वो 94 डिग्री फॉरेनहाइट तक पहुँच गया। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले सोमवार से बुधवार तक भी भारी गर्मी रहेगी। मतलब जो बीच में ठंडक आई थी मौसम में वो ठंडक पूरी तरह से चली गई है और रिकॉर्ड टूटना इट्स लाइक नथिंग इज लाइक दैट। लाइक उमस गर्मी इतनी सारी है एंड जिसके वजह से जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक आ चुकी है। 94 डिग्री फॉरेनहाइट का मतलब यार ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है। तो ये रिकॉर्ड ब्रेक का जो है ये है, हाइड्रेटेड रहना बहुत ज़रूरी है और हाइड्रेटेड रहना ही चाहिए, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। इन्जॉय करते हैं अगला।

हेलो हाय, कैसे का आप सुन रहे हैं रेडियो नारापण रिवन नाइट्स, और एंजॉय किया आपने गाना। वही मैं कह रहा था कि डरम में स्टेफनी मर्डिज ने शहर की नई पुलिस चीफ के रूप में शपथ ली है। वो इस पद को संभालने वाली महिला अधिकारी बन गई है। उन्होंने शहर से अपराध और हिंसा को कम करने का वादा किया है। जी हाँ, क्योंकि हम बहुत दिनों से वारदातें ऐसे देख रहे हैं कि गाड़ियों के शीशे तोड़ के चोरी हो रही है, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें, हिंसक वातावरण जो है वो एरिया में बन चुका है। तो उनका ये कहना है कि रेशो बहुत हद तक वो कम करेंगी और उनकी पहली प्रायोरिटी वही रहने वाली है कि हिंसा को शहर से कर देने का। सो दैट इज़ द थिंग। एंड लाइक अपराध की दुनिया की बात करें तो अपराध भी आजकल बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है वो बढ़ गया है। तो होप सो ये सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी वेरी सून। एंजॉय करते हैं।

आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स एंड हाईवे पर बड़ा हादसा और जाम लाइक आज एयरपोर्ट बुलेवार्ड एग्जिट दैट इज 284A के पास I-40 ईस्ट हाईवे पर कई गाड़ियां जो है वो बड़ी एक्सीडेंट की शिकार हो गई, जिसकी वजह से मुख्य हाईवे को बंद करना पड़ा है और ट्रैफिक जो है वो काफ़ी धीमा है। और लाइक ट्रैफिक के मामले में अगर आप वो एरिया से जा रहे हो तो थोड़ा आपको देख के संभल कर जाना होगा, मैप पे चेक करना होगा, क्योंकि एक्सीडेंट का हादसा जो था वो काफ़ी बड़ा था। तो ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें जो है वो लाइक क्या ही करें, मतलब इनके ऊपर प्रतिबंध कैसे लगाए इसके बारे में सरकार हमेशा जो है वो सोचती है। मैं एक बार फिर से बता दूँ कि बुलेवार्ड एग्जिट दैट इज 284A के पास I-40 ईस्ट हाईवे पर कई गाड़ियों का एक बड़ा एक्सीडेंट हो गया है, जिससे ट्रैफिक धीमी चल रही है, याद रखिएगा। एंजॉय करते हैं।

0: Barrel.
1: Yeah. भाई तेरा बस लिख गाने हर दुनिया देती ताने बस इन दिक्कत पर जब गाना बजे लगे सब सर हिलाने शौकीन चाहिए टिकटे चाहे होने देना शौक ऐसे मुझे गाली बकते पर इंस्टा पे मेरे साथ चाहिए फोटो घड़ी धीरे चलती हम तेज चलते भर डाला ओटू इनके फेस बनते इनके करियर से लंबे हम पे केस चलते ए

आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स, एंजॉय किया आपने ये गाना एंड वेकटेक में एआई की शुरुआत। जी हाँ, अब वेकटेक कम्युनिटी कॉलेज अपने कॉलेज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल कर रहा है ताकि लोग जो है वो एआई सीख सके, क्योंकि टेक्नोलॉजी का एकमात्र साधन जो लीड कर रहा है अब के जनरेशन में वो है एआई। एआई का यूज़ डेली रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी करना बहुत ज़रूरी हो गया है। हर चीज़ जो है वो एआई से सॉर्ट आउट हो रही है एंड यू नो सीखना काफ़ी ज़रूरी है। तो एआई का नॉलेज गेन करने से जो वैकेंसीज आएंगी, जॉब ओपनिंग्स रहेंगी, उसके लिए लोग तैयार हो रहे हैं एंड दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। आपने एंजॉय किया ये गाना, आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्मला नाइट्स, बने रहिएगा रेडियो नायरा पर, पक्का देसी पक्का लोकल। एंजॉय करते हैं अगला एक गाना।